0: जय है। साईराम, आर यू वेटिंग फॉर समवन?
1: साईराम सर, आई एम प्रशांत। मेनी इयर्स अगो यू मे बाल विकास गुरु।
0: प्रशांत, प्रशांत, लुक एट यू मैन, ऑल ग्रोन अप। हाउ आर यू? हाउ आर योर पेरेंट्स?
1: विद स्वामीज ग्रेस आई एम गुड सर, पेरेंट्स आर फाइन टू।
0: वेरी नाइस, कम ऑन, लेट्स कैच अप, माय हाउस इज नियर बाय।

0: Radio Sai now brings you a Santur recital by the devotees from Gujarat, performed on the 19th of October 2009.
1: ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में हमारे कोटि कोटि वंदन है। स्वामी की असीम कृपा से आज हमें है सुनहरा मौका मिला है, तो हम सभी स्वामी के ऋणी हैं, आभारी हैं, और स्वामी की आज्ञा लेते हुए हम लोग आज राग मधुवंती बजाने की कोशिश करेंगे और उसमें थोड़ा सा आलाप करके मध्यले और धूत त्रिंताल बजाने की कोशिश करेंगे। जय साई राम।
2: भगवान की जय हो। प्रस्तुत कार्यक्रम त्रिवेणी, जो कि संतूर, मृदंग एवं तबले का आपसी जोड़, आपसी मेल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। संतूर पे हैं श्री श्याम कुमार, मृदंग पे पंडित बालकृष्ण महान जी एवं तबले पे श्री हिमांशु महंत। जय साई राम।

0: ओके, कम जानी, कम होम विथ मी। मदर, दिस इज जनी। आई थिंक द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द थ्रॉन्ग ऑफ पिलग्रिम्स, सो आई ब्रॉट हर होम। जनी, दिस इज माई मदर गोनाई।
1: ओ गॉड, दे हैव हार्डली इनफ टू ईट एंड यू ब्रॉट होम दिस गर्ल, अ बर्डन।
2: मदर, आई विल बी नो बर्डन। आई विल स्वीप, क्लीन, वॉश एंड डू व्हाटएवर यू टेल मी टू डू।
3: रुक्मिणी, जनी हैज नो वन टू गिव हर अ बाथ, सो आई हेल्प्ड हर टू हैव वन, एंड नाउ विल यू हेल्प मी टू कॉम्ब हर हेयर।